खजाने में तुम माया देन देंगे, काल सीधे चल जाएगा। पर थोड़ा जहां अंदर होर लालच कुछ पे हजूर के चरणों में जल जाके बेनती की, अर्ज की, बीबी का वह माया चाहिए, मालिक बख्शिश करो कि कारे सिरे चल जाए। तो धनु अर्जुन देव पातशाह ने पूछ की थी भाई सता भाई बलवंत किन्नी माया नाल काम सर जाएगा, किन्ने पैसे तुम दे दईए जिसे नाल बीबी का विह सोहनी तरह सिरे चल जाए। थोड़ा जहा लालच मन में आ गया, अभी मसिया का मेला बड़ा लगता है, आखन लगे मेले वाले दिन का जितना चढ़ावा है उन्होंने सारा ही सामू दे दो तो सारा कार्य सिरे चढ़ जाएगा। सतवचन मंजूर है, गुरु अर्जन देव पातशाह कह लगे मंजूर है, प्रवान है। खेड ऐसी वर्ती इतिहासकारा लिखे है कि उस दिन अनेरी चक्कर से कोई बारिश का जोर सी, संगत बहुत ताटी है हजूर के दर्शन करने वास्ते पहुंचिया, जितना इस तो पहले चढ़ावा चल रहा सी उस तो अद्धा भी ना चले, बहुत थोड़ा। दीवान की समाप्ति हुई कि मेरे गुरु अर्जुन देव पातशाह ने कहा भाई सतह के बलवान को बुला के भाई साहब आओ, मेरा वचन सी बीबी का विह तुम करना, अज का चढ़ावा जितना संगत वालों आया वो तुम विह वास्ते देना प्रवान किया, लै जाओ। बड़े औखे होके वो लैता गए पर अंदरों कुड़ दे गए। जदों भाई साहब भाई गुरदास जी पहुंचे तो भाई साहब को आखन लगे गुरु साहब ने साढ़े नाल धोखा किया, असि नहीं हाँ भाई सता का धोखा, कह लगे सानू पता है अज दिन मेले में संगत ने आना सी ना, गुरु साहब ने पहले सुनेहा भेज दिता होना भी अभी घट आयो, जे आयो तो चढ़ावा थोड़ा चाह रहे हो क्योंकि सत्ते गुरुआ ने लै जाने। भाई साहब बसे भाई गुरदास आखन लगे भाई सता यह गल नहीं, गुरु नानक के खजाने में कमी नहीं किसी गल की, पर तुहाडे अंदर के विचार ही कोई इस किस्म के बन गए सन। जे तुसी हाथ जोड़ के बेनती करते पंजवें पातशाह को माझे सारे तुहाडा तुसी आप ही करना है तो उसे घाटा सी कोई, आखन लगे नहीं असी नहीं आना कीर्तन वास्ते। तो भाई गुरदास वापस पहुंचे पंजवें पातशाह के चरणों में बेनती की, सारी गल दसी, आंदे हजूर सिंहासन तो खड़े हो गए। गुरु अर्जन देव पातशाह कितना कीर्तन का इश्क है, भाई गुरदास को नाल लिया, भाई बुढ़ा साहब को नाल लिया, मेरे गरीबन वाले ने संतान को आखिया मैं हूं सतह के बलवान को लैके आना तुम कीर्तन सुनाऊंगे। आंदने सिंघासन से बैठे सन, गुरु अर्जन देव पातशाह के सिंघासन तो उठे तो नंगी पैरी तुर पे, जोड़ा भी नहीं पाया पै। भाई सत्ते के बलवान के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दिखी, दरवाजा खोलिया, बाहर आए, बड़े औखे होते थोड़ी धोनी नहीं करके नमस्कार की रस्मी तौर पर, जिदा मत्था टेकते सन उदा नहीं टेके। पंजे पातशाह बड़े प्यार आखन लगे भाई सत्ता की गल आज कीर्तन वास्ते क्यों नहीं है, संगतं उड़ीकदियां पईआं ने, मैं भी उड़ीकदा रहा, तो बड़ी तुसीं देर कर दित्ती है क्यों नहीं आए कीर्तन वास्ते, आखन लगे असी नहीं आना क्यों नहीं आना। असी कीर्तन करन वास्ते नहीं आवांगे, असी वेखांगे कि हम कीर्तन करना असं नहीं जानते तो संगत किमें थोड़े दरबार आके मत्था टेकती है, असं कीर्तन करना जदों हों संगत हम माके पहुंच गई

मोहन या मन मोहन आय सुर्ग माश पाया लय गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारी गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे थारे सही तुदन गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदन गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सोण वड्डा आखै सब कोए केवट वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोए न जाने तेरा केता केवट चीरा रहाओ सब सुरती मैल सुरत कमाई सब कीमत मैल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन न जाई तेरी तल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया तुद वैण सिद्धी कनै न पाईया कर्म मिलै नाहीं ठाकर आईया आखण वाला क्या बेचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देहे तिसै क्या चारा नानक सच सवार नहारा आसा महला पहला आखां जीवां विसरै मर जाऊं आखण औखा साचा नाऊं साचे नाम की लागै भूख उत भूखै खाए चलिया दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचा नाई राऊ साचे नाम की दल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा न होवै घाट न जाए

जेवड आप तेवड तेरी दात, जैन ध्यन करके कीती रात, खासम विसार हैं ते कम जात, नानक नावे बाज सुनात। राग गूजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सतपुरखा, बिनो करों गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोका राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन केवड़ भाग वडेरे, जन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै त्रिपदास है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन दुरमस्तक लिख्या लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित वै उदम, जा आहर हर जीओ परया। हर हर नाम मिलै त्रिपदास है, मिल संगत गुण प्रगास। जन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित वै उदम, जा आहर हर जीओ परया। सैल पत्थर मैं जंतो पाई, तां का रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर, काहे मन पौ करिया। उडे उड़िया वैसे कुसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन महे सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पा।

तुद बिनय वरना जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना। जो सेव है जो सेव तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्याव है हर त्याव तुद जी, से जन युग में सुखवासी। से मुक्त भय जन हर त्याया जी, तन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक कर हैं हर पूजा जी, तप तप हैं जप हैं बेअंता। तेरे अनेक पढ़ हैं बहु स्मृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पाव हैं मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीवड़ वरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निचल करता सोई। तुद आपे पावे सोई वरतै जी, तू आपे करहें सोई। तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सजियार मैडा साई, जो तुम पावे सोई थीसी। जो तू देह सोई हम पाई राओ, सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनों कृपा करहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना ही सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेव्या

तडुबियले। मान एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलया राव। ना हो जति सदी नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी भरिया। अबर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजा मिलाग भव जल तरन कै, जन्म मृथा जात रंग माया कै राव। जप तप संजम धर्म न कुमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौ पई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दोष्ट सब तुम काव। आप हाथ दे मोहे बचाव।

का आवाज संग रहे हैं, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है, आप हाथ द मुझे भरे आए, मरण काल का त्रास निवर आए, हो जो सदा हमारे पछा, सरिया तुझू करे हो रक्षा, राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बबधरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जो

प्रथम संसार एकारूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा आंड जजे रज से तिज कीने उत पुज खान बहोर रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार या सिख संगरो दोष जिते उठ बत उत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्त हो जे तब शरणी परे तिनके दोष्ट दुख तब मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट रेष्ट उठर तत्काला कृपा दृष्ट धन जहन हर हो ताके ताप धन कमो हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास सक न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उभारा जैन नर नाम तिहारु कहा दारिद दोष दोग तेरा खड़ग

मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। सरी असपान कृपा तुमरी कार, मैं ना कहे सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तां पाया सहज से ती मन वजियां वधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गा बणाइया, शब्दों तांगा वो हरि के राग मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारणा, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पजाइया। सदा कुर्बान किता गुरु विटहो जिस दियां ही वढ़ियाइया। कह नानक सुनो संत हो सब तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सभा गए, कर सभा गए शब्द वाजे कला जद कर धारिया। पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे। कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो बट भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल बसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदा बणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पइयो।

0: मन अंधे जन मन दुबाया, मन अंधे जन मन दुबाया।
1: ओरियापी ने भोग भोग होए पसमण भौ सदाया, वड्डा हुआ दुनीदार गढ़ संगल कट चलाया। अगे

0: जग जीवन दाता पाया।
1: पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखियो अनकार प्रगट आख सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एह विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

हमें यह जात है हमें कर्म कमाए हमें बंदना फिर जो नहीं पाए हम कितों उपजे के संज में जाए हमें हुक्म पे कृप सराय हमें दीर्घ रोग है दारू भी समाए कृपा करे जे अपनी।

कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडव, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोना, कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूपे अपार, कूड़ मिया, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़े नहीं हो लगा विसरिया करता।

0: सतगुरु नु पुछ कै पैरह करे नवास। सच सब ना होए दारू पाप कड्डे तोए, नान बखाने बेनती जन सच पले होए। कौड़ी दान महंडा तलीखा जे मिले तमस्तक लाइए, चूड़ा लाल के छड़िए तो एक मन अलख प्याइए। फल तेरे हो पाइए जे देही कार कमाइए,
1: होवे पूर्व लिखिया सतगुर दिना दी पाइए।

0: हर हर हर मुख कहिए माधो हर हर हर मुख कहिए
1: हर हर हर मुख कहिए माधो हर हर हर मुख कहिए।

दुखदारू सुखरू से आजा सुखकामना होई। तू करता करना मैं नाही जाहो करना होई। बलिहारी कुदरत बसिया प्रांतना जाई लख्या राव। जात मैं जो जोत मैं जाता कलकला भर पू रहा। तू सच्चा साहिब सिरत सवाले जिन की तीस तू पार पिया। कहो नानक करते कियां बाता जो किश करना सो कर रहा। महला दूजा जोग सबदम ज्ञान सबदम वेद सबदम ब्राह्मण है खत्री सबदम सूर सबदम सूद्र सबदम प्राकृत है। सर्व सबदम एक सबदम जे को जाने पे। ओ नानक ताका दास है।

0: नानक मेर शरीर का एक राथे करतवा हो जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझेता साधु ग्रासन तो का धर्म के रथवा रहते रथ जते का जोर अगे रथवा द्वापर रथ तते का सत अगे रथवा हो कल युग रात अगन का ऊड़े अगे रथवा महला पहला
1: शाम कहे स्तंभर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सब को सच समावे रिग कहे रहा परपूर राम नाम देवा महसूर नाए लइए प्राशत जाए।

गुरु रूप खालसा जी आंखों गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिथे आम दुनिया दियां कौमां दा जीवन खत्म हो जांदा है उस सिंह दा जीवन शुरू हो जांदा है। मीर मन्नू दी जेल दियां चक्कियां चरखड़ियां दे दंदे लाहौर दी तत्ती तवी दिल्ली दा चांदनी चौक उपल दी देग सरहंद दी कंध खालसे दे इतिहास दा गवाह हन। इन्हां सिंघां नूं समय समय दियां सरकारां ने खत्म करना चाहिए पर गुरु का खालसा खत्म नहीं हुंदा।

दिल्ली के बादशाह औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि मेरे राज दे विच ढोलकिए सैना नाल कीर्तन नहीं हो सकता, कोई घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। इधर सतगुरु धन गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह ने अपने सिंघां नूं हुक्म किया, सिंघो अज तो मेरा खालसा उस घोड़े की सवारी करूंगा जिहड़ा औरंगजेब के प्यो ने भी नहीं वेख्या। औरंगजेब कहिंदा मैं ढोलकियां बाजे बंद कर देने हैं, पर मेरा हुक्म है कि रणजीत नगारा मरो। सिंघां ने सतगुरु दा पाया हुक्म, मरिया रणजीत नगारा। तेगक कौंदे होए खालसे ला के तौंसे दे उत्ते चोटां चढ़ के घोड़िया दे उत्ते कहे लूर दियां पहाड़ियां नूं शिकार खेडण वास्ते इहो जांदे आ बई।

आतिस सोए उद्म करो दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत होए सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करो कृपा गोपाल बीथले बिस्तरना कब ही जाए रहाओ मन तन धन सब

आई साध संगत के बल बल जाई बहुड़ न जन्मा ताए नानक दास तेरी सरलाई जो भावे तिवें चलाए सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल दी सहस्कार रहाओ ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी भ्रमत हारे भ्रमत बारंबार पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप आद बेआद उपाद सब नासी।

तुम प्रभ अगम अपार, नानक दास तेरी सरनाई, पव जल उतरियो पार। सारंग महला पंजवा, रमण कौ राम के गुणबाद, साध संग त्याई परमेश्वर, अमृत जाके स्वाद रहाओ। सिमरत एक अचुत अबनासी, बिनसे माया माद, सहज आनंद अनहद तुन बाणी, बहुर ना पहे बिखाद। सनकादक ब्रह्मादक गावत, गावत सुख प्रहलाद, पीवत अमेओ मनोहर हर रस, जप नानक हर बिस्माद। सारंग महला पंजवा, कीने पाप के बहु कोट, दिन सरहणी थकत नाही, कतह नाही छोट रहाव। महाबज्जर बिख ब्यादे, सिर उठाई पोट, उगर घन्या खिनह पीतर, जमह ग्रासे चोट। पशु परेत उष्ट गर्धव, अनक जोनी लेत, पाज साध संग गोविंद नानक, कासना लागे फेत। सारंग महला पंजवा, अंधे खावे हैं बिसु के गटाक, नैन श्रवण शरीर सब हुट्यो, सास गयो तत घाट रहाओ। अनाथ रिजान उदर लै पुख है, माया गैया हाट, किल बिख करत करत पछताव है, कभू ना साक है शांत। निंदक जमदूती आए संघारियो, देव है मूड ऊपर मटाक। नानक आपन कटारी आपस को लाई, माने अपना की नो फाक। सारंग महला पंजवा, टूटी निंदक की अद बीच, जन का राखा आप स्वामी, बेमुख को आए पहुंची मीच रहाओ। उसका कहया कोई ना सुनी, कहीं ना बैसन पावे, इहां दुख आगे नरक पुंचे, बहु जोनी परमावे। प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी, कीता अपना पाया, नानक शरण निरपहु करते की, आनंद मंगल गुण गाया। सारंग महला पंजवा, तृष्णा चलत बहु प्रकार, पूर्ण होत न कत हो बात है, अंत प्रतिहार रहाओ। सांत सूख ना सहज उपजे, यह इस व्यवहार, आप पर का कट ना जाने, काम करो दहजार। संसार सागर दुख ब्यापेओ, दास लेवो तार, चरण कमल सरनाए नानक, सद सदा बलिहार। सारंग महला पंजवा, रे पापी तै कवन की मत लीन, निमख करी ना सिमर स्वामी, जियो पिंड जिन दीन रहाओ। खात पीवत स्वंत सुखिया, नाम सिमरत खीन, गर्भ उदर बिललाट करता, तहां होवत दीन। महामाद बिकार भांदा, अनक जोन परमीन, गोविंद बिसरे कमन दुख गनी है, सुख नानक हर पद चीन। सारंग महला पंजवा, माई रे चरन है उठ गही, दर्शन पेख मेरा मन मोहयो, दुर्मत जात बही रहाओ। अगह अगाध ऊंच अबनासी, कीमत जात ना कही, जल थल पेख पेख मन बिगस्यो, पूर रहयो सब मही। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मिल साध है कीनो सही, सिमर सिमर जीवत हर नानक, जम की पीर ना पही। सारंग महला पंजवा, माईरी मन मेरो मतवारो, पेख दयाल आनंद सुख पूरन, हर रस रप्यो खमारु रहाओ। निर्मल पये उजल जस गावत, बहोर ना होत कारु, चरण कमल सिओ डोरी राची, पेतियो पुरख अपारु। कर गहलीने सरबस दीने, दीपक पयो उजारु, नानक नाम रसक बैरागी, कुलह समूहा तारु। सारंग महला पंजवा, माईरी आन सिमर मर जाहे, त्याग गोविंद जीयन को दाता, माया संग लपताहे रहाओ। नाम बसार चल है अनमार्ग, नरक कोर मह पाहे,
अनक सजाई गणत न आवे गर्भ गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते हर की शरण समाहे गुरु प्रसाद नानक जग जीत्यो बहुर ना आवह जाहे सारंग महला पंजवा हर काटी कुटलता कुठार ब्रह्म बन दहन भये खिन पीतर राम नाम परहार रहाउ काम क्रोध निंदा परहरिय काढे साधु कै संग मार जन्म पदार्थ

नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार सारंग महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचह बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुए मेरा स्वामी पूर्ण ताको काम जां कै हृदय वसै पै पंजन तिस जानै सगल जहान खिन पल बिस्तर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगै दान सारंग महला पंजवां बूठा सर्ब थाई मेह आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो नेह रहाओ चार कुंट दह दिस जल निद ऊन थाओ न के कृपा निद गोविंद पूर्ण जी दान सब दे सत सत हर सत स्वामी सत साध संगेह सत तेज अन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेह सारंग महला पंजवां।

परवार रहाओ, कर मस्तक धारियो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम ते आए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भय दयारा, सर्ब सुखा निद पाही, सारंग महला पंजवा, निबहि नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखै माहे अलेप रहाओ, जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीतेओ, बहुड़ जोन ना पाए, भय कृपाल दयाल गोबिंद, भया साधु संग, हर चरण रास नानक पाई, लागा प्रभ स्यो रंग, सारंग महला पंजवा, माई री देख रही बिस्माद, अनहद तुनी मेरा मन मोहयो, अचरजता के स्वाद रहाओ, मात पिता बंदप है सोई, मन हर को अहलाद, साध संग गाए गुण गोबिंद, बिन से ओ सब परमाद, डोरी लपट रही चरण संग, ब्रह्म पै सगले खाद, एक आधार नानक जन किया, बहुर ना जोन परमाद, सारंग महला पंजवा, माई री माती चरण समूह, एक बिन हो आन ना जानो, दुतिया पाओ सब लूह रहाओ, त्याग गोपाल अवर जो करना, ते बिखिया के खूह, दर्स प्यास मेरा मन मोहयो, काडी नरक ते तूह, संत प्रसाद मिलो सुखदाता, बिनसी हूं मैं हूँ, राम रंग राते दास नानक, मौल्यो मन तन जूह, सारंग महला पंजवा, बिनसे काच के व्यवहार, राम भज मिल साध संगत, यह जग मह सार रहाओ, ईत ऊत ना डोल कतहू, नाम हृदय तार, गुर चरण बोहत मिलो भागी, उतरियो संसार, जल थल महियल पूर रहो, सर्वनाथ अपार, हर नाम अमृत पियो नानक, आन रस सब खार, सारंग महला पंजवा, ताते करन पलाहा करे, महा विकार मोह मद मातो, सिमरत नाहे हरे रहाओ, साध संग जपते नारायण, तिनके दोख जरे, सफल देह तन ओए जन्मे, प्रभ कै संग रले, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, सब ऊपर साध पले, नानक दास तूर जन बांचे, उदरह लाग पले, सारंग महला पंजवा, हर के नाम के जन कांखी, मन तन बचन एही सुख चाहत, प्रभ दर्श देखे तब आखी रहाओ, तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी, गत तेरी जाए न लाखी, चरण कमल प्रीत मन बेदया, कर सर्बस अंतर राखी, बेद प्राण सिमरत साधु जन, ए बाणी रसना पाखी, जप राम नाम नानक निस्तरी है, होर दुतिया बिरथी साखी, सारंग महला पंजवा, माखी राम की तू माखी, जह दुर्गंध तहां तू बैस है, महा बिखिया मद चाखी रहाओ, कितह स्थान तू टिकन ना पावे, एह बिद देखी आखी, संता बिन तै कोई ना छाडिया, संत परे गोविंद की पाखी, जी जंत सगले तै मोहे, बिन संता किन ना लाखी, नानक दास हर कीर्तन राता, शब्द सुरत सच साखी, सारंग महला पंजवा, माई री काटी जम की फास, हर हर जपत सर्ब सुख पाए, बीचे ग्रस्त उदास रहाओ, कर कृपाली ने कर अपने, उपजी दर्स प्यास, संत संग मिल हर गुण गाए, बिनसी दुतिया आस, महाध्यान अटवी ते काडे, मार्ग संत कहियो, देखत दर्श पाप सब नासे, हर नानक रतन लहयो,
सारंग महला पंजवा माईरी अरे ओ प्रेम की खोर दर्शन रुचत प्यास मन सुंदर सकत न कोई तोर रहाव प्राण मान पत पित सुत बंधप हर सर्बस तन मोर त्रिग शरीर अस्त बिस्ता क्रिम बिन हर जानत होर पयो कृपाल दीन दुख पंजन परा पूर्व ला जोर नानक सरन कृपा निज सागर बिन से आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की धुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कड तोए जन्म मरण विकार अंकुर हर कात छाडे खोए परा पूर्व जितह लिखिया बिरला पाए कोए रमण गुण गोपाल करते नानका सच जोए सारंग महला पंजवा हर के नाम की मत सार हर बसार जो आन राख्य है मिथन सब विस्थार रहाओ साध संगम भज स्वामी पाप होवत खार चरनार बिंद बसाए हृदय बहुर जन्म ना मार सार अनग्रह राख लीने एक नाम आधार दिन रहन सिमरत सदा नानक मुख उज्जल दरबार सारंग महला पंजवा मानी तू राम कै दर मानी साध संग मिल हर गुण गाए बिनती सब अवमानी रहाओ तारे अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्ब सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन सा सदा सुहागन दह दिस साई जानी प्रिया रंग रंग रती नारायण नानक तिस कुर्बानी सारंग महला पंजवा त्वा चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साख तुम्हें संग राखनहार तुम्हें जगदीश रहाओ तू हमरो हम तुमरे कहिए एत उत तुम ही राखे तू बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जान जां को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस्त संसार रहाओ खात पीवत हस्त सोवत औद बिती असार नरक उदर परमंत जल तो जमह कीनी सार पर द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुरु बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिकठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारू मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती महाकेल रहाओ सुपनरी संसार मिथनी विस्थार।

0: जनक राज वरताया सतजुग अलीना गुर शब्द मन मानिया आप तीज पतीना।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु स्वरूप सात संग जी सतगुरां दे बख्शे हुए मोलक समय विच सोदर संध्या राज जी के नितनेम संपूर्ण होए हन। मेर कीती है जुगो जुग अटल सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने अपनी पवित्र बाणी शब्द दी विचार आपां नूं बख्शी है। धन धन गुरु अर्जन प्रतख हर जिन्हां दे पट्टां दे सवैये उपदेश कल्याणकारी ज्ञान स्वरूप सानू प्राप्त होए हन। आओ जो अगला उपदेश गुरबाणी द्वारा हो रहा है सारियां संगतां आदर सत्कार दे नाल सरवण करिए।

परम सत्कार योग सत संग जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़भागियों दूरों दूरों चल के करो गीत ध्यान संकोच के शरदा प्रेम भावना लेके जागत जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में पुजे आके गुरमुख प्यारियां तो गुरबाणी का कीर्तन गुर इतिहास सरवण कीता। जिन्ना समा होर महाराज बख्शदे ने अज इस पंडाल का पंजवां समाप्ति का दीवान है। सारियां संगतां गज बज के बोल के शरदा भावना नाल जिहड़ी संगत बाद विच आ रही है शांति दे नाल गुरु महाराज का अदब मुख रख के जिथे जिथे जगह मिलती है सतगुरां नूं हाजिर नाजिर समझ के बैठना ते लाहा प्राप्त करना। बहुत वड्डी कृपा होवे उदों सतगुरु पातशाह जी कृपा करदे ने नगरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं घर विच सेवा ते सिमरन दी दात बख्शदे ने। बाकी दातां जरूरी हन जीवन दा निर्वाह माया गुजरान है बहुत जरूरी ने पर मनुष्य दी समझ ज्ञान इस तल ते रुक गया कि अपनी जरूरत नूं मंजिल समझ बैठे। एक मंजिल हुंदी है एक लोड़ हुंदी है जरूरत। जरूरत तो बिना मंजिल ते पुजिया नहीं जा सकता पर जे मंजिल ना आई ते लोड़ां व्यर्थ गईयां। जरूरत ते मंजिल इनू जटकी भाषा विच समझ लो जो कणक बीजी गई है रे बूटे दी जरूरत है पानी बूटे दी जरूरत है गुडाई करनी बूटे दी जरूरत है। ते गुरमुख प्यारेओ मंजिल की है झाड़ निकले दाने पैदा हो। हुण दोवां दा संबंध किन्ना है ते गुरमुख प्यारेओ सेवा तो बिना खर्च तो बिना बूटे दी जरूरत तो बिना झाड़ नहीं निकलना। पर जे झाड़ ना निकलिया वो रे पानी व्यर्थ गया के आखो झाड़ की है वो भी तुहाडे सामने दी किरिया। गुरबाणी ने तो फैसला किया है आ जिहड़ी बाणी पढ़नी है ना नितनेम करना ये क्यों शुरू किया कीर्तन क्यों शुरू किया कथा क्यों शुरू की लो जे तुसी सच गल समझो इन्हां दी लोड़ नहीं सी ये मजबूरी है मनुख दी। समझ लो गुरमत विचों एक सानू अख दती है एक गुरमुख प्यारे वो कन दता है फिर मत दती है समझण वास्ते। जेड़ा आदमी देख के समझ जावे उन्हूं बोलण दी लोड़ नहीं हुंदी। जेड़े बंदे नूं देख के समझ आ जावे आ चीज आ है उन्हूं बोल के दसण दी लोड़ नहीं। जिन्हूं दिखे ना उहदे वास्ते बोलना ही साधन है। अंधा बंदा उन्हूं कहना पऊगा तेरे मूहरे चिक्कड़ है भी पासे हो जा उत्थे बोलण दी लोड़ पई।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਗਿੱਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੀ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਖ ਵਰਤੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।

मच्छी की जाने के सागर केडा वड्डा है, पंछी की जाने के आकाश केडा वड्डा है। हाँ क्या सलाही केब जन वड्डी तेरी वड्याई, तू अगम दयाल अगम है आप ले मिलाई, मैं तुझ में बेली कौन। ए गरीब नवाज मेरा ता आसरा ही तू, मेरे जीवन दा सहारा ही तू। मेहरबान साई मेरे रब्बी दाता, बचपन खेल कूद विच गुजर गया, जवानी मस्तानी अपने आप दा पता ही नहीं रहा। गरीब नवाज हुण तां बुढ़ेपा आ गया, ए मेरे दाता उन तां कंबी दा बरूटड़ा, हां पता नहीं किस वेले मौत दी छल आवे ते रोड़ के लै जावे। हे मेरे धन गुरु नानक दाता मैनू दर्शन दे, दर्शना दी दात पे मंगदा है कौन, प्यारी सासंग राय बुलार आखो श्री वाह राय बुलार। ओ राय बुलार राय पवे तलवंडी दा मालिक, पहली वारी गुरु नानक नु वेख्या गुरु नानक जोगा हो गया, अज रो रहे है बार खूह ते बैठा है, नौकर ने चौकी बिछाई है उत्ते बह के राय बुलार रो रो के अरदासे पिया करता है। हे मेरे दाता आ मैनु दर्शन दे, अखां विचों अथरू डिगदे हैं, चिट्टे दुध वर्गे दाड़े ते आखे पैंदे हैं, मानो सुचे मोती जड़े हन प्यार दे, रोंदा है अखां दियां सिपियां विचों प्यार दे सोची सुचे मोती डुल रहे ते अरदास करदा कि आवा पावे करिए प्यारी साध संगत अरदास। अज राय बुलार बेनती कर रहे हे निरंकार धन गुरु नानक सतेव पातशाह, 12 साला का विछोड़ा किवे सारे आ जा सकता है, आओ दर्शन दे। अखां वस रही हैं ते रसना बेनती कर रही है कि पहले सेवक

अज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी दी ओ जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विछाओ हिरदे ते विछाओ।

पिताजी मेरे नंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे ननकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहा है, सड़ जावण ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण ता रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नु की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नु मुखातब होके कहंदा की

अरदास सारी रात अरदास की थी। अमृत वेड़ा हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन इशनान कीता, करदी पास ते दही रिड़काउंदी है, दही रिड़के सोना मक्खन कढ़े। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखेया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोलदी आं कि तू पहले मक्खन मूंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तू मक्खण चुके मूंह च पा लैंदा। अज वी ओही भैण वीर आए मक्खण तू खा, मक्खण तू खा, तली उत्ते मक्खण पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उड्या पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सचिव पातशाह अमृत वेले कीर्तने जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहने लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सचे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सचे पातशाह? हजूर कहने लगे हां मरदाने तारा भी कई तरह दिया हैं। एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फाइलां बन गईयां न पुराने आरती, तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी। मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है, ए जरा कीर्तन हुंदा है ना ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नू उपदेश देन देन, किसे गुरमुख ने लिखे है कि तार विनदी चीजा परोम दीए, तार विनदी चीजा परोम दीए, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी, तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी, पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन भी चित चुराई जाती। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी? मरदाने नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 साल तो विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तू, नेत्र बंद कीते खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानके आने दियां गलियां च पिया जांदा है आखो सही वारी। पर मरदाना काला है, 12 साल तो बाद घर आया है, एना कर्म काला है। हजूर कहने लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करते सन के भाई जिस वेले गुरु नानक तरंडी आया ते हजूर ने मरदाने नु क्या मरदाने ए पढ़ की